0: DJ Ellie malam ni ya. Ramai yang menonton saya dengan diri Titi Jelly, 25K Rain Tapping, 22 mata-mata matikan saya. Selamat malam, Mazura dan Lambo Kanan hadir. Ya. Okey, kalau Sabtu malam Ahad aja, ramai yang tengah-tengah ini his. Ya. Terima kasih Rizwan. Terima kasih dari Klemang Putra. Ya. Okey, pastinya ramai yang merindukan lagu ini dari filem Bobby. Ya, dari Salam Signal juga Lata Mageshkar ya.
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
1: अच्छा मैं कहती हूँ